मखल मथिल की थोरम सिंह संदूक तुना तहन जरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दगिनी हौजिक लानथोक चरी लेबाक निंग बा इसे सिंह मथंग मथंग उइना खुदोल की अहन बा उइना ताबिरसी संगीत माला की सैसक पा सिंह दगी लेबाक निंग बा इसे यमा इसे की सेरिंग बा हामोम हेरा चंद्रा

하이니 랍나라가 능시버기 먹은 행갓리 담나라가 닝싱바 헤리 나시기 로카처리버 펌 타저버기 왕마다 펌마시기 와리 이비키버 스토리 라이터 के जोयमती देवी स्क्रीनप्ले द नरेंद्र निगोंबा सिनेमाटोग्राफी द इरोम माइपाक अमदी फिल्म असगी एडिटर न लालमणि राजकुमार मियोशिंग असिना नसिंग असिमक्सु मियामना पामने यंगनरिबा फिल्म असी पुथोकपदा थौगायादुना नसिदी मणिपुर फिल्म गी पुकैदा मफम अमदी कंदुना लेरी फिल्म असगी अनिसुब इसे तहंजरी इसे इसेगी खोंजल द दिनेश शर्मा सेरिंगबा सरत युमनाम अमदी सेरांगबना ओकेन अमाकचम

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मखल मध्य थोरम सिंह लेप्तना संदोक चरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दिगिनी।

haujikta biri radio lila bhim na hiram bilu homba lila sida saktam lang kibasing di bhim gi saktam da sarang them shyam babu sing hiram bi gi saktam lang bi khibi anobam russia devi kunti gi saktam da pukhrambam bina devi lila iba chingtham nabakanta sing lila puthokpa ningthokjam lokendra ji ching amadi puthokpa da tingmangba shubhas athokpam अदम थोरम ताबिरिबसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल संदोकचरीबा एफएम मेगाहर्ट्ज साम अहम दशमिक मंगा हौजिक पुंफम असीद अमुक पुदनु लक्चरी मतम इसई अहन वोइन खुदोल तमजरी निंगोंबम नाउबुगी कोंजलदा एकेंद्र तेंसुबना सैरेंगबा मतम इसई

शुक्रिया भीमो। नमस्कार, स्वागत है आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल में, जिसे आप सुन पाएंगे 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त वैलेंटीना। कार्यक्रम गीतों से जो सजे हुए कार्यक्रम है, आपकी पसंदीदा कार्यक्रम गीतमाला में।

दोस्तों कैसे हैं आप, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन है आप ही के लिए और आप ही पर कुर्बान। ये दिन है आपके फरमाइश का दिन है दोस्तों, और ये पहला गीत हम सुनाने जा रहे हैं अपने दोस्त हिजम अजीम की पसंद का। ये गीत है, बहुत ही शानदार गीत है, जानम समझा करो फिल्म से, उदित नारायण की आवाज़ में, और गीत के जो निर्देशक हैं अनु मलिक और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। ये गीत है हिजम अजीम के नाम पर। ये गीत है चांदनी आया है तेरा दीवाना, वाकई दीवाना कोई ज़रूर आएगा इस गीत को सुनने के बाद या सुनते सुनते।

और दूसरा दावेदार हकदार इस गीत का है ओइनाम चंद्रमणि के नाम पर। ये गीत है क्वा कैथेल थौनाउजम लैकाई से, और ये सुनना चाहते हैं कति पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना और सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में ये गीत।

और जिसे मिलने की ख्वाहिश हो वो ज़रूर ज़रूर ये गीत सुने गीतमाला की तरफ से। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त पदमपुर जिला श्री गंगाराम गंगानगर राजस्थान से हैं, मेहर अरोरा के साथ पूरी उनकी परिवार है, ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा और भूमिका अरोरा। सुनना चाहते हैं रॉकी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये गीत है आनंद बख्शी के लेख पर, संगीत दिया राहुल देव बर्मन ने।

अब मिला भी तो क्या हुआ, खुदा जाने। बस वो चेहरा घूमता रहा इन आंखों के सामने। शायद यही हुआ है और यही सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त खोंगजोम सापम से, समरेंद्र हेग्रुजम सुनना चाहते हैं कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। यादगार गीत है साहिर लुधियानवी और खयाम के गीत और संगीत में।

आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल द्वारा यह है कार्यक्रम गीतों का गीतमाला, और गीतमाला के अंतर्गत यह कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आपकी फरमाइश में यह अगला फरमाइश आया है मेल के जरिए के एच तातून की, लिखित मेल है गायखोंग खुलेन मनिंग लेकाई से, और ये सुनना चाहते हैं सुखविंदर और उदित नारायण की आवाज़ों में ये दो गीत जिसके लेखक हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया सुखविंदर ने, और फिल्म का नाम है हिंदुस्तान की कसम।

और दोस्तों ये अगला गीत है जिसके फरमाइश करता है ज़िला पश्चिमी सिंहभूम से चाईबासा झारखंड से, ये झारखंड के ये रहने वाले हमारे दोस्त हैं और ये सुनना चाहते हैं धरती पुत्र फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक के गायन में नदीम श्रवण के संगीत में ये गीत। और कुछ दोस्तों के नाम हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप।

दोस्तों और कद्रदानों, ये गीत है, ये पहला वो नशे का गीत है, प्यार भरा गीत है दोस्तों। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त ईरम सिफाई से पनसंग अम्बी चनू निंगोम्बम, और उनके साथ है येनिंग हुनबी चनू निंगोम्बम। और इस गीत के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार मंसूर खान।

और इसी तरह दोस्तों आपकी पसंदीदा गीतों से खुमारी से भर दीजिएगा हमारे गीतमाला को और भेजते रहिएगा हमारे नंबर पर 9863239365 दोबारा 9863239365 इस पर ज़रूर अपना प्यारा मैसेज लिख डालिएगा और मेल कीजिएगा इम्फाल गीतमाला@gmail.com पर शुक्रिया दोस्तों।

फोरम संदूक तो ने तहन जरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल नी हाउजिक लांथुक चरी कोंगचची की वारी नी थोरम सीधा नामीरकपम मंगलेम सिंह रिटायर्ड आर्ट टीचर गवर्नमेंट डेफ एंड म्यूट स्कूल का उन्हें वारी साबा अनिशुबा तंकक उन्हें गदबियम थोरम पुथोपा नोंथोंबम रोमा तेंबांगबा संगलाकपम देवचंद्र शर्मा हाउजिक लोबी रसी कोंगचची की वारी नी

0: ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯉꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯟꯗꯣ ꯁꯤꯡ ꯀꯧꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯍꯣꯏꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯏꯁꯨꯅ ꯌꯦꯛꯄꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯃ ꯅꯨꯡꯁꯤꯇꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ, ꯇꯥ ꯀꯨꯟꯗꯣ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯃꯪꯂꯦ ꯃꯅꯥꯛꯇꯨꯗ ꯍꯪꯕ, ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤꯃꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛ ꯆꯪꯉꯨꯅꯨ, ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇꯕꯨ ꯆꯪꯉꯗꯤꯅꯦ ꯅꯪ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯣꯏ ꯌꯦꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ. ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯇꯧꯕꯒ ꯀꯨꯟꯗꯣ ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯕꯣꯛꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯥꯟꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ, ꯃꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯟꯁꯦ ꯐꯥꯒꯤ ꯖꯣꯒꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ, ꯁꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯏ ꯀꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯨꯗꯨ ꯀꯗꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅ, ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯚꯤꯡ ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯧꯒꯁꯨ ꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯁꯦꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯃꯗꯨꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯨ. ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯃ ꯃꯥꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥ ꯂꯥꯎ ꯅꯣꯛꯑꯦ, ꯑꯅꯣꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯁꯨꯝ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕꯣ ꯌꯦꯛꯇ ꯌꯦꯛꯑꯗꯤꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯥꯏꯌꯨ, ꯅꯪꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤꯅꯦ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯊꯣꯡꯒꯤꯅꯦ ꯁꯅꯥꯗ ꯇꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ. ꯁꯅꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯗꯣ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯡꯊꯦ ꯃꯆꯥ ꯁꯅꯥꯗ ꯇꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯗ ꯑꯃꯗꯨ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯍꯧꯕꯤꯀꯣ, ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯠ ꯇꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯑꯩ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯩ ꯇꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯦꯅ ꯋꯥꯁꯛꯑꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ. ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ 1962ꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ 1963ꯒꯤ ꯉꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯍꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯍꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯎꯅꯩ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯏꯕꯣ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗꯔꯣ ꯀꯥꯏꯗꯅ, ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯩ ꯃꯥꯂꯣꯝꯗꯒꯤꯅꯤ, ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ ꯃꯟꯒꯅꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯅꯦꯠꯇ ꯈꯣꯔꯝꯕ. ꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ, ꯅꯪ ꯃꯥꯂꯣꯝꯗꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ, ꯃꯥꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯑꯃꯤꯅꯦ, ꯆꯍꯤ 4-5 ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤꯗ, ꯃꯥ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯑꯦꯕ, ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯑꯁꯨ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯖꯥꯠꯅꯤ. ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯡꯒꯣꯟꯗ ꯊꯦꯠꯂꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ, ꯁꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯖꯔꯦ, ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯀꯥꯁꯨ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯌꯦꯛꯑꯝꯃꯤꯕꯗꯨ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯕꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯏ, ꯈꯝꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯨꯝ ꯆꯝꯅ ꯐꯖ ꯐꯖꯅ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯀꯥꯗꯨ ꯑꯩ ꯀꯜꯂꯛꯑꯦꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯂꯔ ꯀꯥꯁꯤ ꯐꯖꯕ. ꯃꯗꯨ ꯐꯂꯥꯡ ꯊꯦꯠꯄꯗ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯉꯦ, ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯨꯏꯁꯤ ꯏꯝꯅꯦꯕ, ꯑꯩ ꯀꯝꯂꯥꯛꯁꯤ ꯍꯨꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯤꯗꯨꯗ. ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯐꯖꯒꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯐꯖꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯌꯦꯛꯄꯁꯤ ꯁꯥꯒꯤꯔꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯗꯣ, ꯃꯗꯨ ꯃꯃꯇꯥꯖꯁꯤꯅ ꯁꯅꯥꯕꯨꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯀꯗꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ, ꯆꯥꯔ ꯃꯤꯅꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯕꯔꯇꯥꯏꯁ ꯌꯦꯛꯄ, ꯘꯔꯤꯒꯤꯗ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯡꯈꯠꯂꯒ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯥꯏꯟꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯆꯥꯔ ꯃꯤꯅꯥꯔ ꯌꯦꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ, ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯍꯪꯒꯦ ꯆꯪꯉꯨꯕꯁꯤꯗ, ꯑꯣ ꯐꯌꯥ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯌꯦꯛꯏꯕ ꯄꯣꯁꯇꯔꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯦꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯛꯄꯅꯤ, ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯈꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯅ, ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯗꯝ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯗꯤ. ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯥꯠꯅꯣ, ꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ, ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯇꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤ, ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯟꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ, ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ. ꯑꯦ ꯃꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ, ꯑꯁ ꯃꯌꯥ ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜꯂꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯟꯅꯤ, ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤ, ꯀꯂꯔ ꯇꯨꯔꯤꯒ ꯄꯥꯡꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤ. ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯂꯔꯗꯣ, ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯒꯦ, ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯖꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ, ꯄꯣꯁ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ. ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯛꯏꯕ ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯂꯔꯦꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯛꯏꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯅꯤꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ. ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯖꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ, ꯌꯥꯎ ꯅꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ, ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯇꯤꯡꯕ, ꯐꯤ ꯇꯤꯡꯕ, ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯨ. ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ, ꯑꯌꯥꯡꯅ ꯃꯥꯂꯣꯝꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯊꯪꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯨꯔꯦ, ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ मेट्रिक सु पास तौजर बने न हयंग गोमेंग थबक सि तौनिया कनी लायक पगे मरम द अजु न सर्टिफिकेट कुम बदे आइ पा म कनी उजब सर्टिफिकेट काति पी बंग बी गजरा हाय मत ए बुङो चुमि हेनंग हायब सर्टिफिकेट की इशू तौ बदे आइ गम जते पी जे दे अजु इबुङो न सर्टिफिकेट पाम बिरे गे जि आइ या सामो दे लिंक खत बा इम्फान आर कॉलेज जदना अखै आवांग दुकान गिदा लैबा कॉलेज म लैबनि अद मदुद मिंग चंबीबन हे नुवाई जों माली हायाबा अजुदि मानो छ मफम दु ताए मतम जों कॉलेज लेयब जे खंग दे आइन नोमिनी नि लेरकांदा आइ सटले कॉलेज जसिदा ओजाई मालोम दगि नि मिंग चंजेगे हेदना अजन मिंग जे चललगा मखा तानो कॉलेज तमजर पनि जागि इंस्ट्रक्शन मखा तोजर पनि अद ओजादो यमिनु सिजे लेबजे लेखिद्रे मागी मसा मसुजिंग लेवरे बुजि मनते वा इने दि खंगजे मोने तेब खंग मो
1: ओजाना लाइ पहाइव सिम्पम सिद थवा याउ न होन रक पदगी ओजा आर के सी एस की खोंगुली रक पगी वारी शो जाना तक पेरी अदु ओजा मतम मम द मालूम से द होर प मतम द ओजाना निंग सिंग बा अंगांग ओरि ngai गि मिकुप तु सु कोई मयाम पुन न खंग मिने न बा निंग सिंग बिरग दि याम नुंगाई चगने ओजा
0: आइ से पिसक पे ngai द करिगो मतम द इमा द आइना नम थाक तौरगा ओंथों थोप अंगक पगी उल्खि बछु याउई इमा ऐसे ना ले रखा पीछे तो बो घर वाक तो हंग तो यहाँ हंगम बो घर वाक तो जाइ ना लेबांग ना कोई की ना जी सार बो उकाबी गुंबा ना नमु गुंबा सार गा तेंगाली कहाँ लगा हफ्ते नंबर
1: घर वाक सीधा
0: कोई घर वाक सीधा अरे इमाने नोंग जी घर वाक सीधे ना हाफ के देगी के तो बदेगी हे लोग चल रहे हंग बो जो लुम लुम लाऊं है ऊपर हंग तो उधर मामूलेरो मामा खरो ऊपर जाने कई दिन आनो चीजे हाँ इमान इंगंग ने ये अंग है बा आई सुकुम कुम दे बा शिवंग आने ने तो जीवो है ना इमान ठेह के ये लेखो मरम बा अजू आई मौन द मशी महाचंदा जी आई इमान चाहिए है बा को मानो वो ही नहीं शायद इन्हें पिछले मंदे ने लेबांग साब आई मौन द वो ले तो ना इधर अजू मगर शु वरी मसागुम्बसी जाम ई अद नोबेल गास ई एकै छुरजे पूर्णिमा अद एकै बसंती श्याम सिंगेल अनि इमान सोहन मनी हाइबगुम्बा वरी मसा मसा जी ई रेगने मिनुस्क्रिप्ट वयले छम थम नोमदे एने पुथोरे पुथोबदे गे मथंग मथंग वयने गे बदुना नंबर 1 गे सानोय कॉलेज गे छात्री जिंगिन वय हि बदगी लारिक्स मांगरे अद कोंदंग द थी उसे दचिन पुरक्तन का दि थंगी फोंगदे गम गि दे अजुगे मधुदगे कितंग चोंधरगनी ऐन मैतै लमजा का इजेगी बतो मैतै लमजा जी इसे कलाय के जमीन फोंगी बनी मतमसिदा ऐना मा माधवी से ऐन इलुस्ट्रेटेड तोवे लोइन बुक सीरियल काइद नै लाय वेन येक थो मधु हुसि फाबो दै लेजेरी याम नोग ने येकी बनी कोनामु कोरोना गी मतम दो मबे छुटी मत बान थो ने बो तम जे लोइन बुक रि पियातो येकी बा अतो कनागु ममने मसि नम थोक पे यानी कान हाय अजो हुजी फाबो दे मधु नम मधु आइगम दिगम द्री अजो का करियो मतम जे नमक पछि याय खली आहा मदे
1: आइ मसि माधवी वारी सिनी को हौ बदगी लोइ बुक पबुस रोजा
0: होय लोइ बबा अज मसि आहा मदे आइ न खर पिकटक तव साइ दे यो आइ ने ये जो सुयो चोंग ने ये ये साइ बु को पे जगी ता दे ने चोंग ये पनि आहा मदे दि बु वय न फोम गे न केचेन द थोइ बा कॉमिक्स सिगी साइ दे ये गा नो मे हिजम गे शाम्पाशिले द प्रेसम लेरम मजेज आई नम्बगी ममनजे हंगियन चपदा तेराद लेब पुखरम बम राय कुमार हबदो जा जमीनीगी नुपासे आज मसु आई उने मल्लाय आई न उसीगी प्रोपाइटर सिंह दुग उनदन मसे नम्ब यागद यारोइद्र माधवीनी आई ने लोस्टे तोजे बने मो येंगी को स्पोर्ट्स दि फजे अदबु मसे इखोन नम्बगी दिङ मो वरम दि डाक्टर कोमोन गी एसेसर मयाम दि ताने द्रगदि आई मसे नंबंग मोय हाय सिदि फजरेदा बुङो नंग लारि छि याम ज पिरम मो आइ हयम लमा बम जसे लगे ने मसे मागी एप्रुभेलम तंग लौरुगे अदुगा नम ने न बहोन छि आइ नंगे kara phaje bu hai ja ni wa ja du le ja ni phane wa ja i tham ja rong ge na tham ma ga cha le a du wa ja sin ye ma ja ni ye ga ma ju cha la ga ha mu bu ja ma

ताकि श्रीदात्ना कौशल बोल से थक्तोग चतना कोनकी ताकिबनी कोनकी कौननबीद शिवाजी चंगसल की ममीदनी शिवाजी अमुक कोनकी कौननब सेम साड़ी शिवाजी तोान तोान प्लेयर सिंह वांग चौरब लाल तई मिल्स मबेंगे चिंब प्लेयर सिंह फिल कोई पेनाल्टी एरिया मनुंग दले कौशल लगपनी मबेंगे ओहो लाल तई मिल्स ना याम ना पचा में हेडिंग मतलब जब मैंने तो वो गोल पोस्ट की वांग वन चक्की में मरो कना गोल तो कौन की दे अमुक ना गोलकीपर किरणजीत तकी जैसे नंबर ना पी गनी सूरज तकी कई फावा तकी Hemba Lanchungri ngapi gani Lanchungri dagi amuk Zona Kamei dagi jasin ba 22 Surjakanta dagi Kisan jasin ba 11 Nirokaya sagi jasin ba 11 Lauriam bam debitam na pisa lakpani Dubu yam na hai sing na Amit Kumar na Maki keeper the heading pass ama pisan give up ball se phajan give galu ina na surasna ball se amu hogalakli surasna ball se am sangna nidol dol le tamna kokalak pani amu khana niroka fc gi defender zirian na heading clearance to throw ki bagalu ina na Zidane na hitting clearance to throw bagalu ina na Jason number 14 Kaukson Jason number 16 Hemba na ball se yam phajan intercept away ball se amuk marki keeper

0: मणिपुरी फिल्म शै मथंग मथंग ताबिरे लख चखीबा फिल्म सिंगदी अहानबदा अरोइबे बिदाई अनिसुबा फिल्म हयेंग नकनागी अहुमसुबदा खदोल तम चखीबा इसेसी हयेंग नकनाना पानगनी फिल्म दकी इसेनी अरोइबदा लख चखीबा फिल्म इदोम चचरगे अदम तोंगन तोंगन बा मखल मथल की थौरम गया ताबिरिबा सी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी हौजे मुगलान थोक्सरी खुंगंग की थौरम
1: ताबिरिब ख्वाय पुमनमकपु खुंगंग की थौरमना तरामन ओक्चली इबुंगो युक्पा योबिरए
2: अहोय योजरगले सेबेमा
1: लेंशिन बिशी
2: फनी फनी सेबेमा
1: ngashidi yumsake shenumi toibani na mahoshagum ekhogi khunggangi thawram sida khunjashing na hangbirakpa wahangsing gi paukum pibagi thawram si ngasigi aroiba thawram moina langjari bungo ngasi mayam na hangbirakpa wahangsing bu paukum pibina bagi damak hoje khogi studio da khongmantabam nimai chan sing su lingshindena laibiri adumak pu hariba khunjashing gi wahang paukum gi thawram si taminadringai mangoina na थांजम नुंशी देवी ने सकपा खोंगजोम पर्व की सहेक्सी मते कमतंग तारगा नसीगी एखोई की खुंगंग की थौरमसी हौदोक्सी
2: फनी फनी सेबेमा
1: सपी गदौरी बा मतांगसी अकोंग जाम बा फोय बिगा की मतांगनी अदुदी तामिनसी बुंगो
2: तामिनसी सेबेमा

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग।
1: मैडम फोन तो चले भी फुबा की विक्रम
0: फुबाला दगी विक्रम तराम नोकचरी करम बेसे तासे गे
1: मैडम तो ये नासों फिल्म दगी तो करो का नाउ बॉय का रोशिदी ना का सब थादो पी नु को तो ब तासे गे
0: होय होजि सिबु विक्रम कै दो बिरमि नो
1: मैडम आइजे सासिन तो का अखान लरिक ना डॉक्टर दिन अदो मै तो जुम गे नो जरे गाइ जो इसे जों दं फंग बं हमसो रो जे गे
0: होय अदो अ खै गे आकाशवाणी फा गि थरम सिंग सिदे दो मग चांग नै ने ता बिब्रो
1: मैडम आइ पेना या काइबे दगी हौरागा पुंग लो लो बुंग गांगे पुंग तरा मखा सिबु रो तासे
0: होय यम नुंगाइ से खै ने संदोक चरी ब थरम सिंग सिबु थावा याउ ना ता बिरम ब दो इसे इसे थाजन जरा गे मते म तंगंग बिरम ओ
1: मैडम आइ जे मंग दे सिजे मतंग आइ जे करा दा ngang मतंग तार ngang जरा गे दो आइ गे लोइना बि Aruna, Ishanupa, Pitas, Ishanupi, Yusika, Ishanupa, Tumba, Akat, Livestream, Sipunapunan, Tamina, Zegan.
0: Hoi, Radio Tabi Ribama, the YouTube live streaming, the Labi Ribama, Yampum, the Makai, say, see, Tamina, Resigudol, Tamjarage, some the Kandir, Libe, say, see, Nachom, film the Gi, now Boyama, the Roshibina, and Punasakminaba. Kish, I show money in a setting, Bago, Piamadi, Rabina, Serang, we say, see, Gudol, Tamjari, Mayampuna, Tamina,
1: thank you.

0: हेलो
1: हेलो मैम
0: हेलो गुड इवनिंग
1: गुड इवनिंग मैम
0: गुड इवनिंग मणिपुर की थरम दा तराम नुकचरी फोन तो बिर इस गी मिंगले फम तक पियो
1: मैम मैं कहो आप पुलिस स्टेशन ले रखते कि सुबह मिंगोले मने मैम
0: होय निंगोले बा कम दो बिर नुंगाई बिर को
1: हो मैम नुंगाई बिर हाय तरे ना गे जाओ दे
0: होय अदोंगा सी दी करम बेसे ताबी दोइनो
1: मैम ओलांग थागी वांग मदे सुबिने आइबम क्याम ने सखवा कारी सही सोगे

0: हेलो,
1: हेलो
0: गुड इवनिंग।
1: हेलो,
0: हेलो, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग।
0: तराम नोकचरी
1: पन तो गेले बाय ने गुड ने गुड इवनिंग नाउ मे मंगले
0: होय मंगले करम बे से ताबी गे दोइनो
1: अन्ने कोई उरी उरी मा थरी प्रियम ने
0: होय
1: कुंजो कुमार ग रामम जब बना ना सखवा थवाजी मा बे मानु सिन मुंदम ओबी तो दम बता जाय ताबी बा
0: होय होय ताजे
1: होय
0: होय कई दौ बीरम लेना होजिक सिबो
1: तुम फोन फोन सुन ओन मने से ताता ना
0: इसे मेक तोम तंग हाबी उबा
1: कुंद कुमा गा रामम जमो ना ना सखवा थवाजी मा बे मानु सिन नु दमो बितो दो उरी रे मादबी फिल्म
0: होय उरी रे मादबी फिल्म सि दी हाई बे से से याउ दबा मादबी फिल्म सि सु फंजदबा तो पैसे ही मा खन भी बे आगद्रा
1: इसे ले गयो बा
0: इसे इसे वारो भी बे आदिया तो पैसे ही मा खन भी बता रहे
1: अदू वर गन्ना तनोगी मर

0: हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग मणिपुर की थरम दत्ता राम लोक चरी
1: गुड इवनिंग मैडम
0: मिंग ले फम तक पियो
1: ए ले फम खनो मखा रखा दी को मिंग मैडम
0: होय
1: थरम से तक जगे मैडम कोई रे दा सुफन ये फंग दे दम नेट पर खुबी गजे ना रे दा मैडम
0: होय मतम क्या हम कोई बिरगे फंग रिसीबो
1: अच्छा कोई रे दा लाल मतुम दे छुवा सुफन फंग रे दा
0: अतोप खुगी गुड इवनिंग मणिपुर नतब अतोप खुगी गुड आफ्टरनून लेडीज कुंबा गुड मॉर्निंग मणिपुर गुमदा दी फंग बिब्रो दम
1: हाय गुड गुड ना लेडीज का अमुती फंग रे आदि जे तोइन फंग दे मैडम काई नो खंग दे
0: लेप्त न तव बिरदी सोइ दन मकिंग असि सुदो मक फंगि दिनि को अदो
1: अदो दुम तव वे मैडम तव बदे ये तुले लेप्त दिब को
0: होय
1: आ केम तता जगे
0: हाय बि हाय बिक्रम इसी तासिगे
1: फाइन था कनो दि जेहरा फिल्म ये खान घर में दा
0: खंड्री
1: ओ जेहरा फिल्म ये सो कम उमोन ने सब दो
0: होय
1: फाइन था दीदी असीर आन दादा तो दो
0: होय
1: मतिए
0: मसु फजन गंग बिरमले जेहरा फिल्म दगी उमोनीगी खोंजेल दा चांदम श्यामा चरण ना सेरेंबा मोयरंग थेम तिकेन अमादी चांदम श्यामा चरण अनी ना सेरांग बेसे सिने दुदी इसे इसे कुदोल तम जरक लगे होय हाय बियो ए
1: ला फोनो मखा रका जगी कुमंदे मुंबी बिनो देवी ना मने दुम तम मा मा मा
0: हो नुंगाई जरे से मैं पुनः तमिन रस्ते खुदोल तम जरी
1: थैंक यू मैडम

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग। हेलो,
1: आई थोड़ी बंदगी शांता
0: होय तराम नोक चली शांता कर्म विषय तासी के
1: कुंजन किरण तकी कोई की समुदाय पम सनातन सर्मन सकपा अवाबदा अवाब पियु नुआई बदन नुआई भापुआई बद सही जुता जगी
0: Sering ba serang ba di khang bibro
1: konjel film gi
0: hoi adu konjel film gi sanaton sharma na sakpa
1: adu khangjet
0: khangjet re sering ba huidrom noren serang ba na pahari adu di se se kudol chamjara age me ampuna tamina resi ko

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो तरामनोक चरी
1: हेलो
0: हेलो गुड इवनिंग मणिपुर की थरम द तरामनोक चरी हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग मिंग लाइफ हम तक पियो
1: मेदा मैं इशोक मखाला करे मरांग दिन ने मेको के मेदा दे
0: इशोक मखा लगाई दगी मोरांग थेम कर है बीबा मेमी
1: दे मार
0: बेम
1: नी
0: बेम
1: हाजा वा मेदा मेदा
0: बेम बेम करम बेसे ही तासी गे
1: मखे की नी रे मा दगी फिल्म दगी बसंत ही माता बना बना
0: सोमगी नाकता रेडियो सेट लाइ बीर कदी घास दंग लाप थो पियो बा हाई बीर ली बैसे इसी खोई की फिल्म दो दी उड़ रही मा दबी होय अमन बसु अंगान बनी फिल्म दगी ओय गदो बनी से सक पिना होय सुनीता ने प्रम ना सकपा राजेन यंग को पम ना सेरिंग बा हमोम ना बना सेरांग बे से सिनी अदो दी से सी मतम सु लेसा होय होय हापिरो
1: नाम काम तना आवन कई लगाई देगी ऐसाम ऐ या बोबा बोबाई बो तो बा तनाई जिने मोनु जी में दाबी जी बपना का में दांग तामी नजर आगे
0: होय मैं आप ना तामी नरसी सोमनसु अरोय बगोल कॉलर ओय गदोरे कोई से सी कुदो तमचरी तापिनसी

ताहनजरीबैसे एसिगलोइन नंगसिगिदमकतेदि गुड इवनिंग मणिपुरगि थरुमदा लाइव फोन इन मणिपुरी फिल्म से लांथोकचबा मतांग सलुजरी थरुमदा सरुक याबिरखिबा कॉल तोबिरखदुन सरुक याबिरखिबा लुइनना थरुमसिबो हौबदगि लुइबा फाउबा ताबिरिबा ख्वाइपुमनमकबु थागतपा फोंदुकजरी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। घटाओं की शॉल ओढ़े ये रात आई है, आसमान ने बिजली की पालकी सजाई है, नाचती है पुरवाई बादलों को झूम के, फिर आया है सावन झूम के। कुछ यही कह रहा है फिल्म आया सावन झूम के का ये गीत।

बिल्डिंगों की भीड़ में गुम हो गई हैं बस्तियां, अब कहां सावन के झूले, अब कहां वो मस्तियां। एक वो भी दौर था जब सावन के मौसम में गांव की ब्याहता लड़कियां अपने पीहर आती थीं सहेलियों के साथ झूला झूलने। सावन आते ही ससुराल में हर लड़की के दिल में ये उम्मीद मचलने लगती थी कि मायके से उसका बुलावा आएगा और वो फिर से उन गलियों में जाएगी जहां उसका बचपन बीता। वो फिर से बीते हुए खुशनुमा दिनों को जी पाएगी। इसी कसक को संजोए हुए है मायके को याद करती बेटी की दिल की पीड़ा को बयान करता फिल्म बंधनी का ये गीत। कहते हैं कि इसे रिकॉर्ड करते वक्त आशा जी की आंखें भरी हुई थी और जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तो आशा जी के साथ साथ संगीतकार एस डी बर्मन और डायरेक्टर बिमल रॉय भी फूट फूट कर रोए थे। महसूस करते हैं अपने पीहर को याद करती एक बेटी के दर्द को इस गीत में।

केवल बेटियों को ना केवल बेटियों को सावन का इंतजार रहता है, बल्कि पूरी कुदरत इंतजार करती है, और खास तौर पर वो महबूबा जिसके महबूब ने सावन के लिए कुछ वादे इरादे किए हों, मसलन झुमके कंगन लाने का या मिलने आने का वादा किया हो, तो तैयार हो जाइए अपना वादा निभाने के लिए।

किसी ने क्या खूब लिखा है कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, जो डाली फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, एकदम से अंतरिक्ष के पार, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। वैसे आपने देखे हैं सावन के झूले? शायद हमारे कुछ साथी झूले भी होंगे, है ना? मैंने देखा था अपने बचपन में, आज भी जब आंखें बंद करती हूं ना तो झूले पर पींग भरती हुई, कजरी गाती हुई गांव की भोली भाली सुंदर महिलाएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे फिल्म बहू बेगम के इस गीत में मीना कुमारी अपनी सखियों के साथ झूला झूलते हुए गा रही हैं।

जब भी बारिश मेरी आंखों में उतर आती है, बादलों में तेरी तस्वीर उभर आती है। दिन वही दिन है जो बीते तेरी उम्मीद के साथ, शब वही शब जो तेरे साथ गुजर जाती है। यूं तो

हर प्रेमिका चाहती है कि सावन में उसका प्रियतम उसके पास ही रहे, लेकिन अगर किसी मजबूरी वश वो दूर है तो फिर वो अपनी बातें चुपके चुपके पुरवैया से करती है। फिल्म चुपके चुपके के इस गीत की तरह।

दुख भराई किसी से जो मुलाकात हुई, खुश्क मौसम था मगर टूट के बरसात हुई, दिन भी डूबा कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, जिस जगह बुझ गए आंखों के दिए रात हुई। सावन के बिना मानो मोहब्बत की हर तास्ता ही बेजान सी हो जाती है। सावन का ये खुशनुमा एहसास दो दिलों को भी भिगोने लगता है। कुछ कहता है सावन, क्या कहता है सुनते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश के इस गीत में।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस चैनल पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए।

0: और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha today gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2020.

0: 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year, and global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year.
1: घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली से घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स लगभग 200 अंक नीचे आया. निफ्टी 24,450 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद. देश में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 4.45% पर पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा भू राजनीतिक तनावों के कारण इस वर्ष तेल की आपूर्ति और मांग में गिरावट होने के हैं आसार. ये भी कहा अगले साल बढ़ सकती है मांग.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही. प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 188 अंक यानी 0.24% नीचे आकर 77,966 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक यानी 0.15% नुकसान के साथ 24,436 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां मिला जुला रुख था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की गिरावट आई.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड विद मॉडेस्ट लॉसेस टुडे. द सेंसेक्स डिप्ड 188 पॉइंट्स और 0.24% टू क्लोज एट 77,966. द निफ्टी ड्रॉप 36 पॉइंट्स और 0.15 to settle at 24,436. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.3%, while the small-cap 100 index fell 0.2%. The markets opened on a weak note amid elevated crude oil prices and geopolitical uncertainties. The Sensex and the Nifty remained under pressure and witnessed broad-based selling. However, both indices pared their intraday losses during the last half an hour of trade.
1: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक पर. सेंसेक्स पैक में आज 30 में से 21 कंपनियां घाटे के साथ बंद हुए. सबसे अधिक घाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ, जिसके शेयर 3.7% नीचे आकर बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% का और टाटा स्टील को 1.6% का नुकसान उठाना पड़ा. उधर मांग निकलने से भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 1.3% लाभ में रहे. भारतीय एयरटेल को 1.1% से अधिक का मुनाफा हुआ और अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम लगभग 0.5% से थोड़े से ऊपर आकर बंद हुए.
0: एंड इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन. अमंग द टॉप लूजर्स हॉस्पिटल्स डिप 2.8%, आईटी लॉस्ट 1.4% एंड फोकस्ड आईटी फेल 1.5%. इन कॉन्ट्रास्ट टेलीकम्युनिकेशंस क्लाइम्ड 1.9%, पीएसयू बैंक्स रोज 1.8% एंड मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक्स quality tilt added over 0.8%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,867 advanced and 196 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे मजबूत हुआ. 95.33 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. सिद्धार्थ जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. एक और प्रमुख सूचकांक थोड़े से घाटे में दिखे हैं, जबकि विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख रहा है. एनएससी का मिड कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा लाभ के साथ बंद हुआ. क्या रुख दर्शा रहा बाजार?
2: नहीं देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं अभी भी बाजार जो बड़ी जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, जो अमेरिका और ईरान की जो युद्ध के बाद जो अनिश्चितता बनी हुई, वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है. साथ साथ उसी की वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल या जो कच्चे तेल के दाम हैं उनमें दोबारा से हमने तेज़ी देखी है. तकरीबन

0: of the group, and this Mr. Chandrasekharan, when he was brought in, handpicked rather by Ratan Tata, and he has in fact delivered, you know, over the past decade or so, taking, you know, the company from, you know, from strength to strength, kind of. So yes, obviously, it would have some kind of a splinter effect on the market, and probably, you know, in the coming weeks or maybe even days, even, you know.
1: I don't see it lingering for a long time. Obviously, we will see some kind of announcement from the Tata Group also coming in, and I don't see anything, any kind of negative impact on the company or the group companies.
0: सिद्धार्थ
2: जी, यानी अभी जो हमने चर्चा की उसमें आपने विशेष रूप से कहा और निश्चित ने भी उसे दोहराया कि अनिश्चितता निश्चित एक कह लें कि स्थिति बन गई है वर्तमान माहौल में. ऐसे में जो हमारे श्रोता हैं, हमारे निवेशक हैं, उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए कि अनिश्चितताओं के दौर में जब बाजार में गिरावट यानी सूचकांक काफ़ी ऊंचे स्तर से लगातार नीचे स्तर पर और अब तो एक रेंज बाउंड यदि जिसे हम कहते हैं उसमें आगे पीछे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वहाँ उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए ताकि साल के अंत में या दो साल में उन्हें अपने निवेश पर नुकसान ना उठाना पड़े.
1: नहीं मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा. अगर मैं इसका जो आंसर जवाब शुरू करूं, जब ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए दुनिया के करीब करीब कई सारे देशों पे, जिसमें भारत भी जिसका पार्ट था, तो उस समय आपने देखा होगा हमारे बाज़ारों में एकदम से जो है काफ़ी गिरावट आई. कुछ दिनों तक वो सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि FIIs ने तो लगातार निकासी की, लेकिन जो हिंदुस्तान का रिटेल इन्वेस्टर था और साथ साथ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका विश्वास हमारी बाज़ार पर लगातार कायम रहा. तो मैं आपके सवाल का जवाब यही दूंगा, एक निवेशक को जैसे कि जैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी बाज़ार में पिछले लगातार दो साल की अनिश्चितता में जो जो अपने विश्वास को कायम रखा है, मुझे लगता है उसमें कोई भी कारण नहीं है कि उस विश्वास में किसी तरह की कमी आए या उनके निवेश में कमी आनी चाहिए. मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और हिंदुस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो ग्रोथ का पैरामीटर देख लें, आप महंगाई दर देख लें, साथ साथ आप सरकार की जो पॉलिसीज हैं, चाहे रिफॉर्म्स हों, चाहे मेक इन इंडिया को लेकर जो PLI स्कीम्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, हमने अभी सेमीकंडक्टर मिशन को भी की भी घोषणा की है, और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे जो कॉरपोरेट टैक्स हो या GST का कलेक्शन हो, तो या UPI का जो पेमेंट्स का जो डेटा आ रहा है उस सब में कहीं ना कहीं, या जो गाड़ियों की जो बिक्री हो रही है उसका डेटा, तो उसमें जो है मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता का विषय बिल्कुल नहीं लगता. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ऐसा पीरियड है, और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि हम जो है हम अपनी 90% जो ऊर्जा की जो मांग है, जो पूर्ति है, वो विदेश से करते हैं, बाहर से लाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ये हमारे ऊपर बिल्कुल, जहाँ थोड़ा महंगाई पर भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, साथ साथ थोड़ा इकोनॉमी पर भी एक प्रेशर दिखेगा कुछ दिन के लिए.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशिया पर ध्यान दें तो एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 3.7% की वृद्धि आज हुई है. जापान का निक्की 225 सूचकांक 0.8% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. आइए लौटते हैं स्वदेश, यानी एक अच्छे आंकड़े आए हैं CPI के, यानी उपभोक्ता मूल्य से संबंधित आंकड़े आए हैं, और हम उन पर श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे. खुदरा मुद्रा स्फीति की दर में थोड़ी सी बदलाव आई है. खुदरा मुद्रा स्फीति दर जुलाई महीने में वार्षिक आधार पर इस वर्ष 4.45% पर बढ़ गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4% से थोड़ा सा ऊपर इस बार भी है. गौरतलब है कि लगातार 2 महीने से हम इसमें इस दर को 4% से ऊपर देख रहे हैं. जुलाई में मुद्रा स्फीति की दर 4.38% पिछले जून में थी, जबकि इस बार थोड़ी सी बढ़त है, मामूली बढ़त. 2024 आधार वर्ष को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया बनाया गया था, उसके बाद 4% से ऊपर लगातार दूसरी बार है. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर, यानी खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4.84% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.96% रही थी. खाद्य मुद्रा स्फीति, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, वह जुलाई महीने में 5.52%

0: प्रतिशत रही, जबकि जून में ये 5.32% थी। यानी खाद्य मुद्रा स्फीति में अच्छी खासी बढ़त, यानी थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जुलाई में जो मुद्रा स्फीति महंगाई बढ़ी उसमें मुख्य कारण व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, रेस्टोरेंट, उसके अलावा एकोमोडेशन सर्विसेज, खाद्य और पेय पदार्थ, विशेष रूप से जो मादक पेय पदार्थ होते हैं उनके दाम भी बढ़े हैं। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम के आभूषणों के दाम अच्छे खासे बढ़े, अदरक भी महंगा हो गया और लहसुन भी महंगा और प्याज भी महंगे हुए हैं इस दौरान, जबकि जिनके दाम कम बढ़े उसमें आलू, भिंडी, टमाटर और मटर शामिल है, और साथ ही वाहन भी, यानी चौपाया वाहन यानी गाड़ियों के दाम भी नहीं बढ़े। कुल मिलाकर इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सिद्धार्थ जी?
1: नहीं देखिए मनु जी, जो अभी पिछले हफ्ते जब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंस की थी तो उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड कर रहे हैं। आरबीआई को इस बात का अनुमान था कि जो ये मुद्रास्फीति या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, इसमें थोड़ा सा इजाफा आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार ने हमारे जो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक को जो टारगेट दिया है वो 4% का टारगेट, महंगाई का टारगेट दिया है, और उसको वो बैंड और वो 2% ऊपर और 2% नीचे उस बैंड में उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि उनको ये भी इंश्योर करना है कि महंगाई दर के साथ साथ जो हमारी ग्रोथ है उसको भी वो बनाए रखें। और उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया था क्योंकि चूंकि जब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था, और फूड इन्फ्लेशन जो कि तकरीबन 37%, अगर आप इंडेक्स का जो सीपीआई का जो इंडेक्स है उसका अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 37% जो है वो फूड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो उसकी वजह से, और जो पेट्रोल और डीजल के दाम पीछे बढ़ाए गए थे तो उसका असर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो सेंट्रल बैंक ने भी इसीलिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए क्योंकि उनको चिंता ज़रूर है क्योंकि मानसून ख़राब है, तो और खास साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस का जो दबाव है वो बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनका ये मानना है कि पूरे साल के लिए ये दिसंबर में जाके कहीं 5% के आसपास पीक करेगा जो हमारा महंगाई दर है, और पूरे साल 5% का एवरेज इन्फ्लेशन शायद उससे ऊपर ना जाए, तो इसलिए इस समय पे। और ये इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि जो मैंने पहले बोला क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो उसका बाकी चीज़ों पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो इसी वजह से। और सर उनको ये भी इंश्योर करना है कि ये जो है ऐसा ना हो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो, तो इसलिए अभी भी वो न्यूट्रल स्टांस सेंट्रल बैंक ने बना के रखा।
2: In fact, if we look at the uptick in the data 4.4%, so that it has something also got to do a bit with the new 2024 base year series as well, since this is the first time, you know, this data has come when this 2024 base year consumer price series has come into effect.
1: Nishit, right. Absolutely right, because this was just introduced in January and yeah. it captures a very wide range of items. It gives you a complete picture of the Indian economy, also the latest items. A lot of obsolete items were discarded.
2: Rightly so, yes.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कमोडिटी बाजार से जुड़े सभी पक्षों से घरेलू बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय मानक और गुड डिलीवरी मानक विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्य रूप से वैश्विक मानकों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। मुंबई में आज आयोजित ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था की को कीमतों का पता लगाने और जोखिमों के प्रबंधन में कितना प्रभावी मदद करता है। सेबी कमोडिटी सूचकांकों और भौतिक रूप से निपटाए जाने वाले गैर कृषि कमोडिटी अनुबंधों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की व्यापक भागीदारी की संभावना पर विचार कर रहा है। एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले कम्युनिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई की भागीदारी को लेकर सेबी ने कल एक परामर्श पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि कृषि जींसों के लिए पोजीशन लिमिट पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त

0: सेंसेक्स और एनएसई में कीमतों के अंतर में काफी कमी आई है। इसके पीछे प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा सांकेतिक सेटलमेंट कीमतें प्रदर्शित करने सहित कई उपायों का योगदान रहा है। यहाँ पर ध्यान यानी प्रतिक्रिया तो हम पूरी खबर पर आपका चाहेंगे, लेकिन विशेष रूप से जो कमोडिटी सेगमेंट में एफपीआई के आने की चर्चा चल रही है, वह किन उद्देश्यों के लिए और क्या क्या लाभ इसके दिख सकते हैं?
1: जो बात वो कह रहे हैं वो शायद नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं मनोज जी, और आज भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी वो केवल कैश सेगमेंट में निवेश करते हैं। अब जो नया डिस्कशन पेपर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक डोमेन में डाला है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव जो कि जैसे सोना चांदी हो या आपके प्रेशियस मेटल्स हो या आप क्रूड ऑयल वगैरह की जो होगी, उसका फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव सेगमेंट में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो है उनको अलाउ करने की बात है। और उसके पीछे बेसिक कारण एक ये है कि इससे एक तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी हमारी बाजार में, साथ साथ जो हमारे बाजारों का इंटरनेशनलाइजेशन भी होगा, क्योंकि विदेश की जितने भी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि उनको जो है किसी भी विदेशी निवेशक को फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स में भी अलाउ किया जाता है।
2: राइट, एंड मूविंग ऑन टू सम अदर स्टोरीज, पार्लियामेंट हैज पास्ड द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 विद द राज्यसभा अप्रूविंग इट टुडे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेशन मुरलीधर मोहोल मूव द बिल which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. Replying to discussion, Mr. Mohol said that through this bill, the welfare and economic empowerment of crores of farmers across the country will be strengthened. And in some other story, the global oil supply is expected to fall by 4.3 million barrels per day, that is BPD, to 102 million BPD this year, as renewed hostilities in the Middle East and maritime disruptions in July and early August undermine the recovery efforts. According to the International Energy Agency's oil market report, global oil supply rose by 2.4 million barrels per day in July, but remained 6.3 million BPD below the pre-war levels. It added that the supply is expected to rebound by 8.3 million barrels per day next year. The IEA expects global oil demand to contract by 1.6 million barrels per day this year as the ongoing closure of the Strait of Hormuz and elevated fuel prices continue to weigh on oil consumption. It said that the demand is projected to expand by 2.4 million BPD, that is barrels per day, in 2027. Siddharth, we'd like to have your comment on this, because the West Asian crisis doesn't seem to get over anytime soon. It's on one day off the other day. So now with this oil supply expected to fall by 4.3 million barrels, that is quite some data, to 1.2 million per barrels per day. How do you see this?
1: Nishit, obviously this would impact the growth, the world growth also, and the obviously the two big reasons are obviously the disruption of the supply, the way the routes are impacted, especially the Strait of Hormuz, and there's still no clarity how far and how soon it will end. Plus the other reason is also the price of crude oil going up. Obviously that also brings down the demand. So that also is also leading to the fall in demand. Not only the supply, the demand is coming down because of the supply, but also because of the prices going up.
2: Right.
0: यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे इस चीज को कि तेल की मांग घटना इस वर्ष क्या कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के थोड़े घटने के आसार व्यक्त कर रहा क्या?
1: नहीं मनोज जी, देखिए अगर एक बात हम लोग निश्चित तौर पे समझ लें कि क्रूड ऑयल एक बहुत बेसिक वो है,
0: कमोडिटी
1: है, जो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मतलब एक बेसिक जिसको ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, किसी भी सामान, केमिकल सेक्टर, तो जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो उस सेक्टर में जहाँ चाहे ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, या किसी तरह के जो जो सामान जो मैन्युफैक्चर होंगे, तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी।

0: इतने बढ़ेंगे तो या तो कंपनी एब्जॉर्ब करे या पास ऑन करेंगी, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी और यहाँ पे कीमतें भी बढ़ रही हैं, साथ साथ उसकी सप्लाई भी घट रही है या अनसर्टेन है, डिसरप्शन हो रहा है। हमने भी जैसे कि बहुत तेजी से हम लोग तकरीबन 19 देशों से इंपोर्ट करते थे जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू नहीं हुई थी, अब आज हम करीब करीब 40 देशों के से ज़्यादा हम अपनी क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं प्लस अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसको थोड़ा उसमें बदलाव किया है, तो उससे हम अपने को मैनेज कर रहे हैं।
1: Yeah, and the global crude oil prices were displaying mixed trend today. The Brent crude was trading 0.2% down at $88.71 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading marginally up at $82.24 per barrel when reports last came in. Quick comments, Siddharth, where do you see the crude going from here?
0: Nishit, I think it's very difficult to say. This is a question, one question I think which nobody would be able to answer. But yes, as long, because we saw it falling in 15 days back, it had almost come below $80. Yes. But again, it has shot up because of the uncertainty.
1: More than that, Siddharth, if I'm not wrong, it came down to around 70 even.
0: Yeah, 70, that's why I said below 80.
1: Yes.
0: And now
1: yes.
0: again, inching up to $90.
1: Yes,
0: so I think it all depends on how, what shape the peace talks take and what is the kind of peace which is reached. Because all the, each time they enter into an agreement, it breaks the next day.
1: Correct.
2: आइए आपको लिए चलें सर्राफा बाजार, वहां से भी समाचार चमक तेज होने के हैं, यानी तेल के साथ सोने चांदी की चमक भी तेज हो रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.4% की बढ़त के साथ 1,53,419 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 0.8% बढ़कर 2,37,214 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों का भी धन्यवाद।
1: थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मनमीत आपके लिए, स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बंबई का बाबू से, आइए सुनें।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है गीत मेरे मन मीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अनुराग से, लता मंगेशकर की आवाज में। ये रहा आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अंजू आ गई हैं स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर, तो आप जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड चैनल से और अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के लिए। फिलहाल आइए इस चैनल पर अब सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले मंजूरी दे चुकी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के

0: पर्यटन क्षेत्र को अधिक कुशल निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोर शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में,

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारा सफर, तो चलिए शुरुआत करते हैं. तुम हो तो रंग है हवाओं में, तुम हो तो रंग है हवाओं में, तुम हो तो खुशबू है फिजाओं में. तुम्हारे होने से ही आबाद है ये जहां, वरना वरना क्या रखा है इन खाली हवाओं में.

तुम मेरी सांसों में शामिल हो, तुम मेरी सांसों में शामिल हो, सांसों में मेरा तुम्हारा ही नाम है, तुम हो।

इस दिल का क्या करें जो कहीं लगता नहीं, तेरे सिवा इसे और कोई जचता भी नहीं। यूं तो महफिलें सजी हैं चारों तरफ, पर तेरे बिना यहां मुझे कुछ दिखता नहीं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तेरे संग ही देखे हैं मैंने सारे सपने, अब तो इस दिल में बस तुम ही लगते हो अपने। तू साथ हो तो हर मुश्किल बहुत आसान लगती है, वरना वरना तो ये तन्हाइयां भी हर पल आती हैं हमें डसने।

तुम छेड़ो प्यार की कोई दास्तान, मैं सुनती रहूं और थम जाए ये जहां, बस तुम हो मैं हूं और हो मोहब्बत की बातें, इस हसीन पल में खो जाए हमारा दिल और जहां।

क्यों खफा होते हो हमसे इस कदर तुम, क्यों खफा होते हो हमसे इस कदर तुम, तुम्हारी बेरुखी से थम जाता है मेरा सफर। माना कि गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, पर तुम्हारे बिना अधूरा है मेरा दिल और मेरा घर।

परिवाओं के ये दिल तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं कि कोई और चेहरा अब इन आँखों में जचता नहीं।

दोस्तों, ये सफर तो अभी यूं ही चलता रहेगा क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है।

0: मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गीरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers, while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
1: University Grants Commission UGC has issued 16 letters of intent LOIs to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education Dr. Sukanta Majumdar said this in a written reply in the Rajya Sabha. He informed that UGC has issued LOIs to 6 foreign higher educational institutions in Karnataka, 6 in Maharashtra, 3 in Delhi NCR and 1 in Tamil Nadu.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. समय हुआ है 1:11:27. मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. दिल तड़प कर तुझे बुलाता है हर एक सांस के साथ. दिल तड़प कर तुझे बुलाता है हर एक सांस के साथ कि अब तो आ जाओ कि कटती नहीं ये रातें तेरे बिन.

जब से आए हो तुम सिमट कर मेरे पहलू में, जब से आए हो तुम सिमट कर मेरे पहलू में, लगता है जैसे पूरी कायनात आ गई हो मेरी बाहों में।

तुम्हें क्या पता कि दूरियों से मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है, तुम्हें क्या पता कि दूरियों से मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है, इसलिए यूं ख्वाबों में नहीं तुम हकीकत में मिला करो हमसे।

देख लो तड़पा कर भी हमको, देख लो तड़पा कर भी हमको अगर सुकून मिलता है, तुम्हारी खुशी की खातिर हम वो दर्द भी सह लेंगे।

चांदनी बिखेरी है अपनी चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए, चांदनी बिखेरी है अपनी चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए, कि आप ही जाओ यह हसीन रात मुकम्मल हो जाए हमारे लिए।

जुबान खामोश है पर आंखों में तेरा ही इंतजार है। जुबान खामोश है मगर आंखों में तेरा ही इंतजार है। सुन सको तो सुनो, ये दिल सिर्फ तुम्हें ही पुकारता है।

कदम तुम्हारे साथ चलें तो हर राह मुस्कुराती है, कदम तुम्हारे साथ चलें तो हर राह मुस्कुराती है, और ये जिंदगी तुम्हारे संग एक खूबसूरत गजल बन जाती है।

0: ये खामोश रात, बहती नदी और तुम्हारा हसीन साथ। ये खामोश रात, बहती नदी और तुम्हारा ये हसीन साथ। दिल तो चाहता है कि यहीं ठहर जाए ये जिंदगी और ये रात।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: दोस्तों, तो ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था और ये सफर यहीं खत्म होता है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गीरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। पाकिस्तान के

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रहिए इस घंटे मेरे साथ और सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत नगमे। चलो बैठें कहीं इस दुनिया की नजरों से छुपकर, चलो बैठें कहीं दूर इस दुनिया की नजरों से छुपकर, कि इस दिल को जीना है हर एक लम्हा बस तेरे संग ही।

वो बात जो अधूरी रह गई थी दरमियां हमारे, वो बात जो अधूरी रह गई थी दरमियां हमारे, आज भी इस दिल में एक हसीन कसक बनकर उभरती है।

वो प्यार था या नहीं ये तो मुझे आज भी पता नहीं। वो प्यार था या नहीं ये तो मुझे आज भी पता नहीं, पर जो एहसास तुमसे था वो किसी और से कभी हुआ ही नहीं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई, अंजू है आपके साथ।

क्या बताएं कि इस दिल की आरजू क्या है, क्या बताएं कि इस दिल की आरजू क्या है। तेरे साथ जीने के सिवा अब इसकी कोई चाहत भी नहीं।

तेरे इश्क में हम इस कदर खुद को भुला बैठे हैं, तेरे इश्क में हम इस कदर खुद को भुला बैठे हैं कि अब आईना भी देखें तो सिर्फ तेरा ही चेहरा नजर आता है।

नींद तोड़ गई है इन आंखों से जब से तुम दूर गए हो। नींद तोड़ गई है इन आंखों से जब से तुम दूर हुए हो। अब तो बस जागती निगाहों को तुम्हारे आने का इंतजार रहता है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत था, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। स्टूडियो में भारती आ चुकी हैं और अगला कार्यक्रम लेकर, कार्यक्रम होगा हमराही जो 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

कभी-कभी एक नजर ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। जहां एहसास सच्चे हों, वहां शब्दों से ज्यादा आंखें बोलती हैं।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ चलने वाला अपना हो। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वह रास्ता होता है जो किसी अपने के साथ तय हो।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए

लिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्यार वो एहसास है जो बिना आवाज दिए दिल की दुनिया बदल देता है। एक सच्चा साथ पूरी जिंदगी को मुस्कुराने की वजह दे देता है।

मोहब्बत का जादू किसी तिलिस्म से कम नहीं होता। जिस दिल में प्यार बस जाए, जिस दिल में प्यार बस जाए, वहाँ हर पल एक नई खुशी जन्म लेती है।

इश्क की सबसे प्यारी शरारत अक्सर आंखों से शुरू होती है। इश्क की सबसे प्यारी शरारत अक्सर आंखों से शुरू होती है। जब नजरें दिल का पैगाम दे दें, जब नजरें दिल का पैगाम दे दें, तो खामोशी भी गजल बन जाती है।

प्यार में दीवानगी तब खूबसूरत लगती है जब उसमें भरोसा और अपनापन शामिल हो। सच्ची मोहब्बत हर धड़कन को एक मीठी धुन में बदल देती है।

और समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 4:10 पर। फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए छोड़कर जा रही हूँ एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी।

0: संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेवल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम।

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म आखिरी खत के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार खयाम, गीतकार कैफी आजमी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नया दौर से आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार ओपी नायर, गीतकार साहिर लुधियानवी।

में, बड़े को भी छोटे को भी, खरे को भी छोटे को भी, दुबले को भी मोटे को भी, नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: हकदार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा. और इस प्रोग्राम में को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म शर्मिली से लता मंगेशकर की आवाज में.

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। गीतकार मनोज कुमार, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सीता और गीता से मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म आंचल से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार सी रामा चंद्रा।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाएगा जी हाँ, 5:10 पर फिर से मुलाकात होगी प्रोग्राम भूर सुहानी में। तब तक ले रही हूँ आपसे विदा और छोड़ कर जा रही हूँ प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म हम साथ साथ से, फिल्म हम साथ साथ हैं। कविता कृष्णमूर्ति, अलका यांग्ने, अनुराधा पोटवाल, कुमार सानू, उदित नारायण और हरिहरन की आवाज में, गीतकार आर किरण, संगीतकार राम लक्ष्मण। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मैं लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है, इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किला के आसपास आज 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषादराज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और

स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर माथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्व प्रणाली के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास के लिए किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि केरल विधानसभा 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरलम करने का अनुरोध किया था। मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान में इसे केरल लिखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद भवन परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा रोड ओवर अंडरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उधर नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

हर सुबह हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नई सुबह अपने साथ नई ऊर्जा नए अवसर लेकर आती है, बस हमें खुले मन से उनका स्वागत करना है।

नया सवेरा केवल सूरज के निकलने का नाम नहीं बल्कि नई सोच नए संकल्प और नई शुरुआत का नाम है कल की गलतियों से सीखिए आज को बेहतर बनाइए और आने वाले कल को उज्जवल बनाने की कोशिश कीजिए